पंचायत सहित सात जना विरूद्ध मुद्दा दायर गैराथी गंडकी बागमती र कोशी प्रदेश में मध्यमदेखि ठूलो वर्षा। इसका साथ ही अहिलेलाई खबर यति नै। बिहान 9 बजे खबर लिएर आउँछौं। प्राविधिक मित्र विकललाई धन्यवाद दिदै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म रेख बिदा हुन्छु। नमस्कार।

रेडियो 100.9 गहर्ज के साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को www.redbaharu.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:45 बजे को खबर में विवेक को नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य मुख्य